0: सिद्धार्थ बैंक क्यारे जन हेदरी जारी संदेश
1: सिद्धार्थ बैंक सम्बन्ध सधैं भरिलाई।

0: को लाभ दी आफ्नो कमाई को लाभ लिने मौका आज बनो सानीमा रिलायंस लाइफ इंसुरेन्स को बीमा अधिकर्ता सानीमा रिलायंस लाइफ इंसुरेन्स खुले जियौ
1: रेडियो दिदी बहिनी 95.2 मेगाहर्ज

0: ढुक होइन ढुक्क हुँ प्रभु महालक्ष्मी लाइफ इन्सुरेन्स के अभिकर्ता बनौ
1: प्रभु महालक्ष्मी लाइफ इन्सुरेन्स लिमिटेड.
2: विचार तितो पनि मिठो पनि, विषय राजनीतिक पनि गैर राजनीतिक पनि, अतिथि परिचित पनि अपरिचित पनि, र सरोकार सीधा तपाईसँग प्रत्यक्ष पनि अप्रत्यक्ष पनि. द न्यूज प्लस, द न्यूज प्लस रेडियो खा संचार 99.4 सहित

0: साझा संचार नेटवर्क का पार्टनर स्टेशन एक प्रत्येक दिन बिहान 6:30 बजे निष्पक्ष सक्रियता को अभ्यास।
1: सयौं समुदाय का हजारों समस्या, लाखों गुनासा,
2: करोड़ों नेपाली का आफ्नै दृष्टि,
3: तर उन्नति का लागि हाम्रो प्रयास,
4: वास्तविकता को एउटै संबोधन,
2: कार्यक्रम आवाज आवाज
3: आवाज
4: आवाज
5: साँझ 6 बजे को समाचार पछि 7 बजे सम्म
2: अब तपाई आफै बोल्नुहोस्,
4: तपाईको रेडियोमा तपाईकै आवाज

फांसों ने सकी ना एरा यूरी ने ना गुम्से का भावना रू सताऊं ने सकी ना शायद हमरा प्रेम अधूरा होना लिखे गया

0: तेरी माया तीन लाई काटी पैसानो तिनी हिड़ में पिस्कर दूसरो तिनी हिड़ में पिस्कर दूसरो
1: मो राजा हूँ छु तिमी पनि त्यो रानी हुने छ एक हाम्रो छुट्टै कहानी बनाउला प्रिन्सेस हामी करी करी विषय दिने कस्तो तिम्रो पानी
0: अब नचाउन पर पर चानी चानी मन नजिक आउँदा किन हुन्छ पानी पानी
1: पैसा ठाउँ कि त जान्छ अब सोच्ने पो हो कि
0: मन मिल्ने साथी मलाई रोज्ने पो हो कि

0: रेडियो रेडियो दीदी बहिनी को समय सूचक हो।
1: अहिले साँझको ठीक छ बज्यो।

0: अब रारा चाउचाउ ब्राउन चिकन, ब्राउन भेज र रारा चीज बल्समा पनि उपलब्ध छ।
1: सामाजिक सञ्जाल जी छानले जाँझीमरी बुझीमरी ब्याङ्गैन आधिकारिक प्रोफाइल मात्र फलोलना खैबै बिनी लिङ खुल्दिउ भन्दा उइसु सुखन क्या खलो सुजित बिमिलो खन यामो बिमारी छानले खोना दे खुल्दिउ वेबसाइटैना यूआरएल चेक लना आक्षेपक घटना तल आफै लागि समय समयरी आफैना पासपोर्ट फेरदिल परेमो नुई तोय तारी शङ्खलैदी भिसा बाङ्गरी यही मरी तुरन्त खबर लना
2: सतर्क तन ठगी तबदक्या जोगिना
3: सिद्धार्थ बाङ्गरक्याले जनहितरी जारी सन्देश
4: सिद्धार्थ बैंक सम्बन्ध सधैँभरिलाई।